0: साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जेआरएसई लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद जीआरएसई भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने सीबीडीटी बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा टीआरएफ का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटरी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनटीए ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटरी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। एनटीए ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi yesterday. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the

0: మీరింతవరకు స్తుతిమాల క్రైస్తవ భక్తి గీతాలు విన్నారు. స్తుతిమాల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ. ఆకాశవాణి సమయం 8 గంటలకు వస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో సమాచార ప్రభాత్, అనంతరం మార్నింగ్ న్యూస్. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి
1: నమస్కార్. ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మై ముకేష్ కుమార్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की. वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित. सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की. विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज. ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान. बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार. भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया. और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता. तन्वी और कोमल को कांस्य पदक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की. श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं. हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है.
2: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की. पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया. श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी. इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा. आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है. ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है. एक रिपोर्ट.
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था. बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर. मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त

0: प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
3: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग

240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज एमवी ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह

0: अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की पहली तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी।

0: दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स BJP's न्यूली फॉर्म्ड टीम एट पार्टी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। पार्टी पासेस रेजोल्यूशन रिगार्डिंग ऑनर एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक लेगेसी ऑफ वंदे मातरम। Center notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And in wrestling, Mansi Lathar wins silver medal at Under-20 World Championships in Slovakia. Tanvi and Komal claim bronze medals. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the Bharatiya Janata Party at its headquarters in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening its connect with the people. BJP President Nitin Nobin also held a meeting with the newly appointed national office bearers of the party. During the meeting, the BJP passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. A report.
3: BJP President Nitin Nabin said that the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. In a social media post, Mr. Nabin said that in the resolution regarding the honor and protection of the historical legacy of Vande Mataram, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas at Congress programs. He said that the party is resolved to undertake a nationwide campaign through BJP workers to take the history, meaning, national significance and glorious legacy of Vande Mataram to every corner of the country. Following the conclusion of the first meeting of the national office bearers, a national workshop was held with the state presidents, organization general secretaries, among others, for the Seva Sankalp Abhiyan. Briefing the media, BJP National General Secretary Vinod Tavre announced that the BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday on 17th of September. With Anand and Priya, Soumya Sharan, Akashwari News, Delhi.
2: The central government has notified the removal of the 12-minute advertisement duration cap for television channels. The decision has come into effect with notification of the amendment in the Cable Television Network Rules 1994 in the Gazette. Earlier, Information and Broadcasting Ministry said that in view of the changes that have occurred in the TV broadcasting sector, a need was felt to revisit the stipulations relating to advertisement duration. A report.
4: The ministry added that in India, the TV broadcasting sector is heavily dependent on advertising, irrespective of whether a channel is pay or free to air. It said there was a non-level playing field for traditional TV channels vis-a-vis digital.

0: तराशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें

आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज का दिन पूरे देश के लिए अत्यंत गर्व और गौरव का दिन है। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, वही ऐतिहासिक दिन जब भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व में भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा का लोहा मनवाया था। अंतरिक्ष से जुड़े वैज्ञानिक अन्वेषण केवल दूर सितारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी धरती, खेती, मौसम, पर्यावरण और विकास की रीढ़ है।

0: अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आइए सुनते हैं अंतरिक्ष में भारत की उड़ान। इस विषय पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC के आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव जी से भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रही है कृष्णा कुमारी। नमस्कार श्रोताओं, आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 23 अगस्त का दिन पूरे भारत के लिए बेहद गर्व का दिन है। आज हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। इस खास मौके पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हमारे दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है NRSC से डॉक्टर SK श्रीवास्तव जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी हैदराबाद स्टूडियो में राष्ट्रीय सुधीर संवेदन केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव को आमंत्रित करने के लिए।
0: श्रीवास्तव जी, शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है?
1: भारत हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या नेशनल स्पेस डे मनाता है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरकर भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की थी
0: जी।
1: और इस उपलब्ध से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र साउथ पोलर रीजन में उतरने वाला विश्व का पहला और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। और भारत सरकार ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। ये दिन भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को सम्मान देने की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी कहूंगा कि भारत सरकार की यह पहल युवा पीढ़ी, जो हमारी यंगर जनरेशन है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने और अपना कैरियर बनाने के लिए भी बहुत प्रेरित करेगी। क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 पर चंद्रमा पर कदम रखा था, तो इस वर्ष हम अपना तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं।
0: बिल्कुल श्रीवास्तव जी, ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। श्रीवास्तव जी, जब हम उपग्रह और डेटा की बात करते हैं तो NRSC का नाम सबसे आगे आता है। NRSC की प्रमुख भूमिका और दायित्व क्या है?
1: ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसको शॉर्ट में हम NRSC भी कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के केंद्रों में से एक प्रमुख केंद्र है
0: जी।
1: और इसके 5 प्रमुख कार्य हैं। पहला कि ये भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के साथ साथ विभिन्न विदेशी सैटेलाइट्स से डेटा प्राप्त करना। दूसरा, जो भी डेटा सैटेलाइट से आते हैं NRSC के पास में, उन डेटा को प्रोसेस करना तथा इसे प्रयोक्ता समुदायों, जैसे कि डिफरेंट यूजर कम्युनिटीज होती हैं हमारी, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में, राज्य सरकारों में, शैक्षणिक संस्थाओं में और प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स या किसी भी इंटरनेशनल यूजर्स को पहुंचाने में मदद करना। तीसरा जो काम होता है NRSC में, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए तकनीकों का विकास करना। चौथा जो काम होता है, अगेन यूजर कम्युनिटी के लिए हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ R&D एप्लीकेशंस यानी कि अनुसंधान एवं विकास के लिए ड्रोन से सर्वेक्षण करना। और पांचवा है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आउटरीच, जिसमें हम प्रोफेशनल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं डिफरेंट ड्यूरेशंस की। और पांचवा जो NRSC का जो काम है वो है क्षमता निर्माण और आउटरीच, जिसमें हम प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि ये जितने भी पांचों काम मैंने आपको बताए, तो ये NRSC हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी एक विशिष्ट संगठन है, जहां ये सभी कार्य एक ही छत के नीचे किए जाते हैं। NRSC पूरे देश में फैला हुआ है और हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और हैदराबाद के आसपास इसके 3 परिसर हैं। इसके 5 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं, जो बेंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता और नागपुर में स्थित
0: जी। श्रीवास्तव जी, आम तौर पर लोगों को लगता है कि अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ रॉकेट और ग्रहों तक सीमित है। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देश के एक आम आदमी को किस प्रकार प्रभावित करती है?
1: अगर आप देखें कि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, वो शुरू से ही जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, इनके विजन पर आधारित रहा है और उनके अनुसार अंतरिक्ष तकनीकी हम आम आदमी की समस्याओं के समाधान के माध्यम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात बहुत जोर दिया है कि आम आदमी और अंतरिक्ष तकनीक के बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस लेफ्ट बिटवीन कॉमन मैन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी
0: जी।
1: और हम इसी दिशा में अंतरिक्ष विभाग में काम कर रहे हैं। और आपने सही ही कहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी आज केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के आम आदमी की दिनचर्या का एक अदृश्य और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है
0: जी।
1: और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक साधारण नागरिक जाने या अनजाने में इस तकनीकी का लाभ उठाता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको, जैसे कि मौसम की जानकारी एवं पूर्वानुमान, जितना भी

0: कम्युनिकेशन होता है जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन
1: जी।
0: सैटेलाइट नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, मैप्स को देख सकते हैं, अपनी गाड़ियों को नेविगेट कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इमरजेंसी सर्विसेज या आपातकालीन सेवाएं, दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि, जल और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन में इसका इस्तेमाल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण और शहरी विकास, केंद्र और राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाओं के तहत बनने वाले बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग। तो अगर संक्षेप में कहें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आज भारत में केवल वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं तक सीमित न रहकर हर गाँव और हर घर में पहुंच चुकी है, जो आम आदमी के जीवन को सुरक्षित, सुगम और समृद्ध बनाने में निरंतर योगदान दे रही है।
1: जी श्रीवास्तव जी, सचमुच ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सर, हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं एक बड़ी चुनौती रही हैं। बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी आपदाओं में एनआरएससी किस तरह मदद करती है?
0: जी, एनआरएससी इसरो के डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम यानी आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सैटेलाइट आधारित सेवाएं प्रदान करता है।
1: जी सर,
0: सभी आपदाओं की सेवाएं नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट पोर्टल, इसको हम शॉर्ट में एनडेम पोर्टल भी बोलते हैं, इसके माध्यम से एकीकृत रूप में उपलब्ध कराई जाती है। एनडेम एक अनूठा जियो पोर्टल है जो देश भर में सभी प्राकृतिक आपदाओं में स्पेस आधारित इनपुट्स को प्रसारित करता है। अगर मैं बाढ़ की बात करूं तो सार मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार और ऑप्टिकल सैटेलाइट डेटा के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नियर रियल टाइम में मैपिंग की जाती है और उन मैप्स को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भेजे जाते हैं।
1: जी,
0: दूसरा जो एक काम एनआरएससी ने किया है, एनआरएससी ने हिस्टोरिक सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके कई बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम एटलस यानी फ्लड हैजार्ड्स एटलस भी तैयार किए हैं और ये एटलस खासतौर से कोई भी हम डेवलपमेंटल प्लानिंग करते हैं उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं और उसकी वजह से हम डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बाढ़ के पूर्वानुमान की बात करें या फ्लड फोरकास्टिंग की बात करें तो एनआरएससी ने तापी और गोदावरी नदियों के लिए काम किया है और इन सब की जानकारी हमारे एनडेम पोर्टल में जैसा कि मैंने बताया ये मौजूद होती है
1: जी।
0: और कोई भी जितने भी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जनरल पब्लिक है इन जानकारियों को एनडेम पोर्टल में देख सकती है और उसको इस्तेमाल कर सकती है। आपने जंगल के आग की बात करी तो एनआरएससी और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI दोनों साथ मिलकर सैटेलाइट डेटा की मदद से नियर रियल टाइम में जंगल की आग को डिटेक्ट करते हैं और मैप करते हैं और जब इन स्थानों का पता लग जाता है कहां कहां देश में जंगल में आग लगी हुई है तो उसको तुरंत ही SMS और ईमेल अलर्ट के साथ राज्य वन विभागों को भेज दिया जाता है, अधिकारियों को भेज दिया जाता है सो दैट वो ग्राउंड पे उचित कार्यवाही कर सकें। और ये भी डेटा हमारे एनडेम पोर्टल और भुवन पोर्टल जो NRSC होस्ट करता है उस पर मौजूद रहता है, इससे ग्राउंड टीम्स आगे की स्थिति को ट्रैक कर सकती हैं।
1: जी,
0: लैंडस्लाइड्स भी आपने बोला, भूस्खलन, सैटेलाइट डेटा का भूस्खलन लैंडस्लाइड्स की स्टडीज में काफी योगदान रहता है। खास तौर से लैंडस्लाइड्स की मैपिंग यानी इन्वेंट्री सैटेलाइट डेटा से की जा सकती है, हैजार्ड असेसमेंट यानी खतरे का आकलन किया जा सकता है और अगर कोई मेजर लैंडस्लाइड होती है तो हम सैटेलाइट डेटा के माध्यम से रैपिड डैमेज असेसमेंट यानी कि नुकसान के त्वरित आकलन हम इससे कर सकते हैं और पूर्व चेतावनी भूस्खलन की भी इससे दी जा सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और NRSC दोनों इस दिशा में काम कर रहे हैं। NRSC ने खासतौर से कुछ कंट्रीब्यूशन पिछले कुछ वर्षों में किए हैं, जैसे पिछले 25 वर्षों के सैटेलाइट डेटा को विश्लेषण करके NRSC ने पूरे देश में करीब 80,000 से अधिक लैंडस्लाइड्स की रिच इन्वेंट्री तैयार करी है और इसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्से हैं उनके लिए 25,000 के पैमाने पर लैंडस्लाइड के खतरे वाले क्षेत्रों के नक्शे तैयार किए हैं और ये नक्शे हमारे भुवन और एनडेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम रैपिड डैमेज असेसमेंट भी सैटेलाइट डेटा के माध्यम से करते हैं तो जैसे ही कोई मेजर लैंडस्लाइड होती है और अगर रिक्वायरमेंट है तो तुरंत ही हाई रेजोल्यूशन उपग्रह मानचित्र की मदद से प्रभावित क्षेत्र की सीमा और नुकसान की सटीक पहचान की जाती है। और वर्तमान में NRSC लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन और अर्ली वार्निंग या पूर्व चेतावनी के लिए एडवांस तकनीकें विकसित करने की प्रक्रिया में है। आपने चक्रवात की भी बात करी यानी साइक्लोन्स की बात करी तो सैटेलाइट डेटा का साइक्लोन्स की स्टडीज में भी काफी योगदान है। खासतौर से चक्रवात या साइक्लोन जब डेवलप होने लगता है तब से लेकर उसके खत्म होने तक उसके ट्रैक का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग

0: जो है वो सैटेलाइट डेटा के माध्यम से हो सकती है। हमारा जो इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारत मौसम विज्ञान विभाग है, सैटेलाइट डेटा और न्यूमेरिकल मॉडल्स का उपयोग करके साइक्लोन के टकराने का समय और लैंडफॉल का सटीक अनुमान लगाता है, जिसकी जानकारी जो है अधिकारियों के कोस्टल कम्युनिटी को जहां पे लैंडफॉल होने वाला है वहां पे भेजी जाती है, जिससे साइक्लोन के हिट होने के पहले ही वहां पे उपस्थित लोगों को एक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। इससे जान कम से कम लाइफ जो है ना सेव की जा सकती है। इस तरह इसरो का जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम है, यानी आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम है, हर एक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: जी श्रीवास्तव जी, ये तो राहत और बचाव कार्यों के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी है। श्रीवास्तव जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। उपग्रह तकनीक हमारे किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? क्या ये फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक है?
0: जी कृष्णा जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर,
1: जी
0: इस टेक्नोलॉजी का नियमित रूप से निम्न कार्यों के लिए उपयोग करता है। मैं कुछ चार पांच कार्य बताना चाहूंगा। पहला, कि सैटेलाइट डेटा के उपयोग से देश की 11 प्रमुख फसलों के फसल क्षेत्र का आकलन एवं उत्पादन का पूर्वानुमान, ये एक मेजर प्रोजेक्ट है जो ये मिनिस्ट्री या कृषि मंत्रालय जिस पे काम करता है। इस पूरे इनिशिएटिव को क्रॉप एरिया एस्टिमेशन या प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फोरकास्टिंग भी कहते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं प्रबंधन के लिए कृषि सूखे की निगरानी करना। तो
1: जी
0: हर 15 दिन में मानसून सीजन में खास तौर से एग्रीकल्चरल ड्राउट यानी कृषि सूखे की निगरानी सैटेलाइट डेटा और अन्य डेटा के माध्यम से की जाए। तीसरा जो है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर का असेसमेंट या आकलन और बागवानी विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान। चौथा है जो आज के दिनों में काफी इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुई क्षति का त्वरित आकलन तथा बीमा मुआवजा प्रदान करने में सहायता देना, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज की डेट में किया जा रहा है। पांचवा है, आपने उत्पादकता की बात करी तो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन या फसल सघनीकरण, उसके तहत हम सैटेलाइट डेटा के माध्यम से क्या करते हैं कि धान की फसल के बाद पड़ती रह जाने वाली जो भूमि होती है या क्षेत्र होते हैं उनकी पहचान करते हैं, ताकि ऐसी भूमि पर रबी के मौसम में पल्सेस या ऑयल सीड्स लगाकर अधिक क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। हाल ही में इसरो और IMD के सहयोग से कृषि मंत्रालय ने कृषि DSS पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल उपग्रह चित्रों, मौसम, मिट्टी तथा जल स्तर से संबंधित डेटा को एकीकृत करके साइट स्पेसिफिक सलाह प्रदान कर किसानों को फसल उगाने में मदद कर। तो जैसा मैंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग या स्पेस टेक्नोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका।
1: जी श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, खेती के साथ साथ जल संकट भी एक गंभीर विषय है। जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन में सैटेलाइट इमेजरी की क्या भूमिका रहती है?
0: जी, सैटेलाइट डेटा से हमें वाटर रिसोर्सेस सेक्टर में कई तरीके की जानकारियां मिलती हैं। पहला, कि पानी कहाँ कहाँ उपलब्ध है। जब मैं पानी की बात करता हूँ तो इसमें सतही जल यानी सरफेस वाटर और भू जल यानी ग्राउंड वाटर
1: ग्राउंड वाटर
0: दोनों शामिल हैं। पानी में क्या बदलाव हो रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी में क्या बदलाव हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है समय के साथ साथ। तीसरा चीज है, कहाँ पे ऐसे स्थान है या स्थल है जहाँ पे हम इन वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। और चौथा है, कहाँ कहाँ पानी बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
1: जी
0: तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि पूरे देश में विभिन्न जिलों में वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम चलाए जाते हैं
1: जी
0: केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। तो इन वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रमों में जो प्लानिंग होती है और जो भी कार्य होते हैं उनकी मॉनिटरिंग और इम्पैक्ट असेसमेंट
1: जी
0: यानी कि उसके असर का, जो भी हमने सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ग्राउंड में या वाटरशेड में, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसको हम रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से देखते हैं। दूसरा चीज ये है कि हम रिमोट सेंसिंग डेटा से जो सरफेस रन ऑफ होता है या सतह पर बहने वाला जो बारिश का पानी होता है उसको जमा करने के लिए हम सही जगहों की पहचान कर सकते हैं।
1: जी
0: और उसके साथ साथ ऐसी कौन कौन सी जगह हैं वो डिपेंड करता है जियोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर में, तो उनका सैटेलाइट डेटा के माध्यम से अध्ययन करके कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया सकता है वो भी हम जानने में मदद हमको मिलती है। आजकल अर्बनाइजेशन बड़ी तीव्र गति से हो रहा है
1: जी
0: और उसके कारण में रनऑफ में भी काफी वृद्धि हो रही है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कमी हो रही है, जिसकी वजह

0: से भूजल स्तर में भी लगातार गिरावट आ रही है। तो रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन से उन इनपर्वियस सरफेसेस की पहचान करने में हमें मदद मिल सकती है और साथ ही साथ आसपास के उन उपयुक्त स्थलों का पता लगाने में मदद मिलती है जहां इस रनऑफ को सफलतापूर्वक एकत्रित किया जा सकता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगली चीज बताना चाहूंगा कि जिन इलाकों में खेती या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या औद्योगिक गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है, वहां पानी के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करने में भी रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन आंकड़े मदद कर सकते हैं और इससे भूजल पर निर्भरता जो है वो कम की जा सकती है। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट्स जो हमारे मौसमी उपग्रह हैं, उनका इस्तेमाल करने से हमको आज ये पता रहता है कि कहां और कितनी बारिश होने वाली है। सो ये जानकारी फसल की बुआई और सिंचाई जैसी गतिविधियों में मदद करती है जिससे हम जलाशयों में जमा पानी को बचा सकते। तो ये सब कुछ चीजें थी जिससे हम ये देख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी या रिमोट सेंसिंग डेटा का जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन में कैसे क्या उपयोगिता है।
1: श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। श्रीवास्तव जी, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में अंतरिक्ष तकनीकी की क्या भूमिका है?
0: देखिए, सैटेलाइट डेटा का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम एक लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये जान सकते हैं, अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशंस हैं तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं या पृथ्वी हमारी किस तरीके से बदल रही है। और ये जानकारी से हमें जलवायु परिवर्तन को समझने, पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने और समय पर कदम उठाने के लिए मदद करती है। जहां तक जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में सैटेलाइट इमेजरी की भूमिका का सवाल है या सैटेलाइट डेटा की भूमिका का सवाल है, हम सैटेलाइट डेटा यूज करके टेम्परेचर यानी तापमान, रेनफॉल पैटर्न
1: जी,
0: एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ग्लेशियर्स, स्नो कवर, वेजिटेशन यानी वनस्पति, सी लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं, एरोसोल्स, ग्रीन हाउस गैसेस और जो अन्य एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स हैं उनके बारे में लॉन्ग टर्म डेटा का एनालिसिस करके क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये मददगार रहता है। और अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो हमें अनेक तरीके की जानकारियां मिलती हैं सैटेलाइट डेटा के माध्यम से, जैसे वनों की कटाई या जहां कहां कहां वनों का क्षरण हो रहा है जिसको हम डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी कहते हैं
1: जी,
0: भूमि के क्षरण कहां कहां हो रहे हैं इसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, वायु प्रदूषण कहां हो रहा है, कोस्टल इको सिस्टम्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहां कहां मैनग्रोव्स में चेंजेस आ रहे हैं या कोरल रीफ्स में चेंजेस आ रहे हैं, और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों की लंबे समय तक हम निगरानी करने में सैटेलाइट डेटा में मदद कर सकता है।
1: जी श्रीवास्तव जी, ये सारा काम नई पीढ़ी की भागीदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि किस प्रकार विकसित की जा सकती है?
0: जी कृष्णा जी, इसरो ने इस दिशा में अनेक पहल किए हैं, मैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलों पर प्रकाश डालूंगा। इसरो देश भर में स्थित अपने केंद्रों पर कक्षा 9वीं पास स्कूल विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष एक युविका प्रोग्राम, जिसे हम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम या युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम कहते हैं, आयोजित करता है
1: जी।
0: और इस कार्यक्रम में पूरे देश से विद्यार्थी आते हैं और अंतरिक्ष के विषय में जानकारी हासिल करते हैं, इसरो की सुविधाओं का भ्रमण करते हैं, वैज्ञानिकों से संवाद करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और व्यावहारिक गतिविधियों में भाग लेने का उनको अवसर मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिससे हम स्कूली विद्यार्थियों को स्पेस साइंस में रुचि पैदा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि जो हमारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी शोधार्थी हैं, उनके लिए इसरो भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन का आयोजन भी पिछले कुछ वर्षों से कर रहा है। इसमें जो भी प्रतिभागी आते हैं पूरे देश से, वो स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का उपयोग करके इसरो के द्वारा दी गई वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते हैं। और हमारे जितने भी इसरो के केंद्र या यूनिट हैं पूरे देश भर में, मोर ऑर लेस हर जगह पे अंतरिक्ष प्रदर्शनियां और संग्रहालय, स्पेस एग्जीबिशंस और स्पेस म्यूजियम्स उपलब्ध हैं, और हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी इन प्रदर्शनियों का भ्रमण करते हैं और स्पेस साइंस और उनके एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उससे प्रेरित होते हैं। हमारे कई केंद्रों में मोबाइल प्रदर्शनी भी है जिसको हम स्पेस ऑन व्हील्स कहते हैं, और ये मोबाइल प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों में जाती है जहां विद्यार्थी सैटेलाइट के मॉडल, रॉकेट के मॉडल देखते हैं और वैज्ञानिकों से इंटरेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं और नए अनुभव प्राप्त करते हैं। इसरो के केंद्रों में आप देखिए कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं उनके लिए

0: विभिन्न अवधियों के अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग कोर्सेस आयोजित किए जाते हैं, जिनमें उन्हें वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ संवाद करने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। और पांचवी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इसरो के स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोग्राम में विश्वविद्यालयों और उनके विद्यार्थियों को ये मौका दिया जाता है कि अपने सैटेलाइट्स को बनाएं और उनको लॉन्च करने का अवसर, एक इवैल्यूएशन के बाद में ठीक है तो उसको लॉन्च करने का अवसर भी उनको दिया जाता है। और कई सारे स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट सेंटर्स में आते हैं और अपना बीटेक का या मास्टर्स का या पीएचडी का प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस, डिसर्टेशन वर्क हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स की सुपरविजन में करते हैं। चूंकि हम नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो करीब पिछले 2-3 हफ्तों से इसरो के सारे केंद्रों ने लगभग पूरे देश भर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, खासतौर से स्कूली बच्चों के लिए
1: जी।
0: और उससे लाखों की संख्या में विद्यार्थी और जनरल पब्लिक को अवसर मिला है स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के बारे में जानने का। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन एनआरएससी की बात करूं, तो खाली एनआरएससी और उनके रीजनल सेंटर्स ने करीब 30 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए पूरे देश में और लगभग 1,00,000 लोग इससे लाभान्वित हुए। तो ये कई सारे प्रोग्राम, इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको यूज करके विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के प्रति रुचि विकसित करते हैं।
1: जी श्रीवास्तव जी, जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए अंतरिक्ष विज्ञान और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में करियर के क्या अवसर उपलब्ध है?
0: आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपार अवसर हैं और संभावनाएं हैं पहले की अपेक्षा। आपने करियर की बात करी, तो आज कैरियर खाली इसरो में ही नहीं है
1: जी,
0: बल्कि ये अवसर केंद्र एवं राज्य सरकार के संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं उनके अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी उपलब्ध हैं, जो हमारे अनुसंधान संस्थान हैं उनमें उपलब्ध हैं। और अंतरिक्ष यानी स्पेस और जियोस्पेशियल सेक्टर में कार्यरत जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनमें भी अभी कैरियर के काफी सारे अवसर मौजूद हैं। जहां तक इसरो का संबंध है, यहां साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति होती है और जो छात्र साइंस, इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी या अन्य विषयों के एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, वे ओपन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इसरो में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए स्पेस रिफॉर्म्स, इंडियन स्पेस पॉलिसी और नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी ने प्राइवेट कंपनियों एवं स्टार्टअप्स के स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराए। तो इन नई प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स के आने से युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजित होंगे।
1: श्रीवास्तव जी, बहुत ही उत्साहवर्धक बात बताई आपने। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारी युवा पीढ़ी को भारत की अंतरिक्ष यात्रा और उसकी उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे याद है कि मानव ने पहली बार 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था और उसी साल इसरो का गठन हुआ था। तो आप देखें कि हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से प्रगति की और आज हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाले विश्व के पहले देश हैं। तो यदि हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है यानी विल पावर है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए मेरा संदेश होगा कि आप बड़ा सोचें, बड़ा सपना देखें
1: जी,
0: क्रिएटिव बने, इनोवेटिव बने और हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करें। मेरे विचार से कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज अंतरिक्ष क्षेत्र में अपार अवसर व संभावनाएं हैं, तो मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी भारत की अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस जर्नी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और भारत को एक स्पेस पावर और विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं।
1: जी श्रीवास्तव जी, सपनों को अंतरिक्ष जितनी ऊंचाई दीजिए, कितनी खूबसूरत और प्रेरणादायक बात कही आपने। श्रीवास्तव जी, आपने अपने व्यस्त समय से वक्त निकाला और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे अंतरिक्ष में भारत की उड़ान, इस विषय पर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC के आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव जी से भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रही थी कृष्णा कुमारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारण किया गया। श्रोताओं, आइए इस प्रेरणादायक दिन पर हम सभी अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति उत्साह और गौरव के साथ जुड़े।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का ये हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: to the playing 11. In the FIH Hockey World Cup, the Indian women's team will take on Australia tonight. India must win this match to stay in contention for a semi-final berth. The Pool E match will begin at 10:30 p.m. India's qualification will also depend on the result of the earlier match between China and the Netherlands. India need China to lose that match. If China win, India will be eliminated even with a win over Australia. Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal today highlighted the need to reduce manual intervention in sanitation work through mechanization. Speaking at the Foundation Day celebrations of the National Commission for Safai Karmcharis in New Delhi, Mr. Meghwal stressed the importance of safety measures, protective equipment, training, health insurance and proper monitoring. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent, extends greetings on National Space Day. BRICS Sports Ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to embark on a two-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbours against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo. And in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे छत्तीसगढ़ ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी वे कौन है इसमें क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है बहुत लोगों को हमें जोड़ना है हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है हिंदुस्तान जाओ भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है
1: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था

0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉ मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉ सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का

0: 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नये क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि जीआरएसई ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। जीआरएसई की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, होर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट

0: मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
1: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की, ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी हैदराबाद केंद्रम।

0: उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कल से हैदराबाद में वाकई बीजेपी के रियासती दफ्तर के करीब 2 रोजा एहतजाज मुनज़म किया जाएगा। सितंबर 17 से अक्टूबर 17 तक 1 महीना भर मुल्क भर में मोदी के 25 साल सेवा संकल्प अभियान प्रोग्राम को मुनाकद किया जाएगा। आटो मजदूर जेएसी के चेयरमैन बीआरटीयू आटो मजदूर संगम के सदर मारैया ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत आटो वर्कर्स के मसाइल को हल करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ आटो वर्कर्स संगमों के कायदीन के इजलास के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज निसफ शब से रियासत भर में आटो वर्कर्स हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाया। आटो वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए एक फलाही बोर्ड कायम करने की मांग की। मारैया ने 25 लाख ऑटो ड्राइवर्स को इस हड़ताल में शामिल होते हुए इसको कामयाब बनाने पर जोर दिया। रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने ऑटो और कैब ड्राइवरों की जानिब से अपने मसाइल को लेकर किए जाने वाले हड़ताल की मुकम्मल तायद करने का ऐलान किया। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से किए गए वादों को पूरा करने और ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक फलाही बोर्ड कायम करने का मुतालबा किया। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों को हर साल 12,000 रुपये फराहम करने के वादे को पूरा करने पर भी जोर दिया। रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि रियासत में तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने और बैरूनी सरमायाकारों को रियासत में सरमायाकारी के लिए रागिब करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बैरूनी दौरे को अपोजिशन जमातें जानबूझकर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों बीआरएस और बीजेपी पर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों में रुकावट डालने का भी इल्जाम लगाया। डीजीपी सीवी आनंद ने साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के 20 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अवामी तहफ्फुज़ में पुलिस के निजाम के लिए अवाम और खानगी इदारों का ताउन बहुत जरूरी है। 23 अगस्त 2006 को कायम हुए काउंसिल ने अवाम और खानगी इदारों के ताउन से कई एक प्रोग्रामों को रूब अमल लाई है। खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए शी शटल्स और तलबा के लिए चैतन्या जैसे प्रोग्राम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने साइबराबाद कमिश्नर के तौर पर काउंसिल के इस्तेकाम और अवाम के तहफ्फुज़ के लिए कई एक अहम प्रोग्राम अंजाम दिए गए हैं। रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजमीन असातिज़ा पेंशनर्स को सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारफ करवाई गई नई एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम के रहनुमायाना खतूत को खतियत दी है। एक मरहले के इलाज के लिए 3 लाख रुपयों के हद को मुकर्रर किया गया है, जबकि तिब्बी अखराजात इस हद से ज्यादा होने पर मरीजों को कोई तकलीफ न होने के लिए मुकम्मल कैश लेस तिब्बी सहूलत मुसलसिल जारी रहेगी। इस स्कीम के लिए मुलाजमीन के तनख्वाहों से 1.5% कटौती की जाएगी, जबकि इसके मसावी ग्रांट को हुकूमत जमा कराएगी, जबकि शिकायतों के हल के लिए भी एक खसूसी ग्रेवेंस निज़ाम को भी कायम किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर जी दयाकर ने कहा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से तालीमी साल 2026-27 के लिए एमबीए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्सों में दाखिलों के लिए मुनाकद किए गए इम्तिहानात कामयाबी के साथ मुकम्मल हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 9 मराकज पर ये इम्तिहानात मुनाकद हुए, जिसमें 1,185 अफराद ने अपना इंदराज करवाया था, जबकि 957 उम्मीदवारों ने इन इम्तिहानात में शिरकत की। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज भारी से भारी बारिश होने का इम्कान है। इसके लिए महकमे ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खलीज बंगाल में पैदा होने वाले कम हवा के दबाव की वजह से कुमरम भीम आसिफाबाद मंचरियाल पेद्दापल्ली जयशंकर अजला में बाज़ मकामात पर भारी बारिश होने की पेश कयासी की गई है, जबकि आदिलाबाद निर्मल निज़ामबाद करीमनगर समेत दीगर अजला के लिए येल्लो अलर्ट जारी किया। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर में वाक़ गोदाम में आज सुबह आग लगी। मुगल खाने के करीब एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगने पर भारी शोले भड़कने लगे। इस हादसे के मौके पर गोदाम में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करीब में वाक़ दीगर गोदामों को आग अपनी लपेट में लेने के पेश नज़र महकमे फायर ब्रिगेड और मकामी पुलिस अपनी कोशिशों के जरिए आग बुझाने की कोशिश कर रही है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मनादिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। अब खबरें खत्म हुईं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने

0: सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has urged

0: चक्रीय स्थानाय ऑस्ट्रेलिया दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य उक्तवान् यत् अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमाः प्रशासने स्वविश्वासं प्रकटितवन्तः। अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यम संस्थानां मुख्यकार्यकारी अधिकारिभिः सह संवादावधौ श्रीमोदी तान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढं अन्तरिक्षक्षेत्रीयं पारितन्त्रं निर्मातुं प्रेरितवान्। असौ उक्तवान् यत् देशे अनुकूलं वातावरणं निर्मातव्यम् यत्र विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः जनाः अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं भविष्यं च निर्मातुं भारतं प्राथमिकतया गन्तव्यस्थानम् इति पश्येयुः।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: श्री मोदी उक्तवान् यत् व्ययस्य दृष्ट्या भारतम् अत्यन्तं प्रतिस्पर्धाक्षमम् अस्ति, अथ च अत्र गुणवत्तापूर्णाः प्रतिभाः सन्ति यासु संकटस्वीकरणस्य दृढा क्षमता वर्तते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतयोः विशेषतयोः संयोगेन भारतं वैश्विके अन्तरिक्षक्षेत्रे शीघ्रमेव श्रेष्ठस्थानं स्थापयितुं समर्थमस्ति।
1: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
0: संवादावधौ भारतस्य स्काईरूट एयरोस्पेस इत्यस्य संस्थानस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदना अन्तरिक्षक्षेत्रं निजक्षेत्र उद्घाटनाय प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं प्रति आभारं प्रकटितवान्। ब्रिक्स क्रीडा संयुक्त घोषणा सर्वसम्मत्या स्वीकृत्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनं नगरे ब्रिक्स क्रीडा मन्त्रिणां सभा समाप्ता। घोषणापत्रे ब्रिक्स देशानां क्रीडा विषये संवादस्य परस्पर सम्मानस्य समावेशनस्य च माध्यमेन सहकारं सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितम्। भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायां 26,000+ वर्षे आयोजितायाम् अस्यां सभायां क्रीडामन्त्रिणः सदस्य राष्ट्राणां वरिष्ठप्रतिनिधयः च मिलित्वा क्रीडा विकासं युवसहभागित्वम् अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं च प्रोत्साहनाय उपायान् चर्चितवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मन्त्री डॉ मनसुख मांडविया स्वस्य प्रारम्भिक भाषणे व्यावहारिक निरन्तर सहकार्येण सुदृढ ब्रिक्स क्रीडा सहभागितस्याः निर्माणाय आह्वानम् अकरोत्। सह क्रीडकानां प्रशिक्षकानां च आदान प्रदानं संयुक्त स्पर्धाः क्रीडा विज्ञानस्य अथ तन्त्रज्ञानस्य च आदान प्रदानं प्रस्तावितवान्। डॉक्टर मांडविया अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतं स्वस्य क्रीडा पर्यावरण व्यवस्थां परिवर्तयन् अस्ति, एवञ्च क्रीडांगणात् मञ्चपर्यन्तम् अवसरान् कल्पयति। सः पैरा स्पोर्ट्स इत्यस्य प्रोत्साहनाय क्रीडासु महिलानां सहभागित्वं वर्धयितुं च भारतस्य प्रयत्नान् अपि प्रतिपादितवान्। राष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसावसरे केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह चन्द्रयान तृतीयस्य ऐतिहासिक सफलताया स्मरणं कृतवान्। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे डॉ जितेन्द्र सिंह 23,000+ अगस्त मासस्य 23 दिनांके घटितं तत् ऐतिहासिकं क्षणं स्मृतवान्, यदा चन्द्रयान तृतीयं सफलतया चन्द्रस्य दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशे अवतरितम्। सः उक्तवान् यत् अनया उपलब्धिना भारतं विश्वस्य प्रमुखान्तरिक्ष देशेषु स्थानं प्राप्तवान्। सः भारतीय वैज्ञानिकानां योगदानस्य प्रशंसामपि अकरोत्। प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम्

0: చిత్రసీమలో సినీ గీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 8:45. సమాచార సంధ్య, ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార సంధ్యా కే సాత్ మే సర్ ఫిరోజీ. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है. आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं. विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई. ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती. और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है. श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है. बहुत लोगों को हमें जोड़ना है. हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ. मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें. प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की. स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है. ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट

0: लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
4: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों देशों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील

0: की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देशभर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शताब्दी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
1: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

0: और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges private space sector to build global aura of innovation as India celebrates National Space Day. Defence Minister Rajnath Singh stresses self-reliance in shipbuilding and maritime sectors. ICMR clarifies no new strain of swine flu identified in the country, assures current vaccines remain effective. BRICS Sports Ministers meeting concludes in Visakhapatnam with adoption of joint declaration to strengthen cooperation, inclusiveness and mutual respect in sports. In football, East Bengal lift Durand Cup for the record 17th time, defeating arch rivals Mohun Bagan in Kolkata. And in the FIH Hockey World Cup, India to face Australia in Netherlands tonight in a must-win Pool E fixture for a semi-final berth. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector and space research to build a global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on the National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures.
3: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: अपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है

भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग दो दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बारीकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद माल्शे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और ये सब कुछ राग के निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ

0: ये था राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का समापन राग सुहा से कर रही हैं। द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं प्रीत सो प्रीत चंदा, और द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है झूम झूम झूम बदरवा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विथ राग सुहा। द्रुत बंदिश सेट टू एक ताल, बोल प्रीत सो प्रीत चंदा। ऑल्सो द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल झूम झूम झूम बदरवा।

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत जोशी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Raag Suha, and that concludes vocal recital Vidushi Pratima Tilak in tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on tabla by Shri Yati Bhagwat and on harmonium by Shri Anant Joshi and Sarangi Ustad Farooq Latif Khan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai, and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप